0: भगवान सर
1: वेरी ब्यूटीफुल शुक्रिया
0: दैट ये परीक्षा चा बालक को मात डालेगा ये डिस्ट्रॉयड सिक्स ऑफ देम तब विष्णु भगवान को कलाशीष नाग की जिग्निंगा कहते देवकी गर्भ के स्तित्व आए गर्भ देव के हर शिशोक के बढ़ने वाले हुआ when the seven child Santarsan Balram was placed in to the womb of Devaki she experienced great happiness आनंद रूप भगवान को अवतार होता है this is partial incarnation of the Lord इस बात को हर्ष को पहले के बालक को समान के बालक भी कंस मान डालेगा बातक को शोक दिन रात डे एंड नाइट शी वरीड अबाउट दिस वन नाउ बिकॉज दिस इज द सेवंथ आई नाउ शी इज गेटिंग टायर्ड तब विश्व भावन भगवान को जाने के मेरे यादव को कंस के दुखों को देते हैं ही इज अ सोर्स ऑफ पेन फॉर द यादवस उस समय अपने नेत्र को योग माया के प्रकट को करे उसके आज्ञा दो ही समझ दे योग माया द डिवाइन गॉडेस हरसेल्फ हे भद्र हे देवी कल्याण रूपिणी को ग्वाल बाल को गौ को शुभित मजबूत गो है वहां जाकर वसुदेव जी की रोहिणी के नन्न राय को जाके गोकुल में एक्सट्रैक्ट दिस चाइल्ड एंड टेक इट ऑफ कोर्स एंड प्लेस इट इन द वूम ऑफ रोहिणी सेवन चाइल्ड धर्मचार्य वाज आस्किंग मी टुडे व्हेन वी कृष्ण भगवान लेफ्ट गोलोक एंड ही ब्रॉट वृंदावन यमुना एंड गोवर्धन हाउ वी ब्रिंग इट This evening we were talking about it. He said, "Now we ever stop to think, boy, how God do that? We had just take for granted Govardhan Parvat is there. The Yamuna running through, and the Vrindavan. Vrindavan is Vrindavan. But they say that that is part of it. Golok, his world that you bring here. How you bring that? Interesting concept. So same. Yoga Maya, goddess of the three worlds. She removes seven child and places it in the." womb of Rohini. He gives her instruction. Mangalup, जब तू गर्भ खींच को पीछे में परिपूर्ण रूप से देखकर पुत्र भावन के प्राप्त हो तो नंद राय जी को भारी यशोदा को दर में उत्पन्न हुआ है When you are finished with that, you would go and you would create the feeling of expectancy, the Yashoda, and remain there, wait until I come. Should you experience that day? Hey Shaunak, when the goddess listens to these words, Balidan ko vedh kaliyo, tera pujan ko karege, toot ke sampurna ko manodat purna karege. For doing this, in the age of Kaliyo, your worship will become famed in the three worlds. People will give, make offerings to you and they will, your worship will spread all through. Prithvi par shantar sar ko sundar sundar ko mandir banayege, दुर्गा भद्रकाली विजय वैष्णवी ऑल टाइप ऑफ मंदिर्स विल बी नेम आफ्टर संकर्षण कहने के जगत को डमने वाले उनका राम कहेंगे महाबलशील है संकर्षण एंड बाय द नेम ऑफ राम बलराम वेरी पावरफुल स्वीकार करके फिर पद को आकर कार्य को मोहिनी रूप को मथुरा विवस्वत को घर के आए हैं और गर्भ छिपाकर शी डिड एज़ शी वाज इंस्ट्रक्शन गर्भे प्रमितो देवक्य रोहिणी योग निद्रया अहो विस्तरम सतो गर्भा इति पैर विचुक्रह नाउ द टाइम अराइव्ड ऑफ कोर्स फॉर द एडवेंट ऑफ द लॉर्ड

सफले पावन को लगने लगे सुगंध से एंड इमिटेड ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस किन्नर कन्दर्भा भगवान यीशु को गान करने के द डिवाइन वंस दे बिगन टू सिंग चलपान शम शम चमके हैं एंड इस प्रकार भादो की अश्मी बुधवार रोहिणी के नक्षत्र ऑन वेंसडे ऑन द अश्मी इन द होली एस्टरिज्म ऑफ रोहिणी आदि को रात को समय इन द मिडल ऑफ द नाइट देव रूपिणी देव की कौदव सर्व अंतर्यामी भक्त भाव भगवान साक्षात अपने रूप में प्रकट हुआ है। ओम आधार रात के समय पूर्व दिशा पूर्ण चंद्रमा उदित होता है। जस्ट लाइक द मून इज ऑन द राइज द डिवाइन लॉर्ड अपीयर्ड।

ससंग चक्रम सकेत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसर्वेक्षण सहार वक्षस्त Vishnu, Shirasa Chaturbhuja, appearing in his bedecked form of Shankha Chakra Gada Padma, Devaki submits and Vasudeva submits a prayer to him, Lord, we are blessed to have the sight of you, but this is not the form. And of course, he takes on the form of Deva to fulfill his word that was given to Kashyapa and Aditi in three lives. And of course, to honor his word to the bhaktas, the divine Lord manifested. Shukadeva explains to Parikshit that the moment that that took place, itne katha ko Shukadev ji bole, he rajan, yaha baat samajh pura kar, Bhagwan chup ho gaye hain aur apni maya ko mata pita ko dekhe ne sadhan, balak ho gaya, he became a child. Aur preran Vasudev ke prasiddhi ke putra ko lekar bahar nikal ko ichha hai, usi samay Gokul ko nandiyo, Yashoda udari yog maya janma liya. At the same time, the divine goddess of course took her advent in the home of नंदन यशोदा इन ब्रज मंडल शोभमान चल जब कृष्ण को लेकर वसुदेव के चले द्वार को बड़े बड़े को भी हा उनमें को लोग भारी की और संकट पड़ते हैं ताले को लगे हैं अब उपाय को खोल गया है ऑल्दो दे वर फास्टेन्ड इन चेन्स रिजाइडिंग इन ए सेल व्हेन द डिवाइन ऑफ कोर्स कास्ट हिज स्पेल एवरीवन फेल अस्लीप डोर्स ओपन शकल्स केम आउट यहाँ शब्द गर्ज गर्ज को चराने लगे बारिश को आए हैं रेन्स केम एंड गर्ज द थंडर स्टार्टेड रंबलिंग आधा रात साए कर रहे थे झुक मार को देवे के कभी कभी बीच बीच बिजली को चमक जाते हैं द लाइटनिंग वुड फ्लैश एंड इन बिटवीन दैट रेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन वुड बी सीन आश्रय धीरे धीरे चले जाते हैं वसुदेव टुक चाय प्लेस देम इन अ विंडो प्लेस देम ऑन हिज हेड और वर्ष को गिवन इंस्ट्रक्शंस हैवी रेन्स And of course, made his way now from Mathura across the Yamuna. Yamuna ko Vasudev ko mark diya hai on his way. Jaise jaise rikar Vashu Gokul ko pahunchenge, Nand Dwar ko jaakar dekhte ho, bada khule hue hain. On the way to Gokul to meet, of course, the home of Nand. Yamuna rises with the rainfall, and when she touches his feet, she subsides once again. Vasudev makes his way to Gokul. And there, of course, he sees loving girl child, places down, replaces, returns to Mathura. And Sukhji explains very beautifully. When he came back, Shukriji bole, Hey Rajan, bahar bhi tarko dwar uske prakar bandh ko ho kanya ko rone lage hain. When everybody got binded back, when the chains and the fetters were reattached, kanya ko rone lage. You hear the cries of a girl child. Shri Krishna.

circumstances alerted to such कन्या को बद कोड़ योग नहीं है जिसने मन में अत्यंत दया उत्पन्न हो रहे पुत्र यह पुत्र नहीं है बन देवकी has regains her posture she says ये कन्या है this is a girl child shouldn't of course क्योंकि तेरा भांजड़ी और तुम हे स्त्री के ये कन्या को बच को करने योग्य हैं girl child is made to be protected at all

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरा रे जिसकी रखवा लिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

लावण्य पीयूष पूर्णे मनश्चद्वदो मे भवक्लेश तप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे स्वर्णादिदिव्यम्बरैर्भासमानां क्वणत्किङ्गिणी मेखला शोभमानां लसद्देम पट्टेन विद्योतमानां कटिम्बा

खोले, जब कोई साथ नहीं आया तब तेरी मूरत ही रोशनी बनी, तेरा नाम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, बस मुझे अपनी भक्ति में डुबो लो प्रभु।

सिर्फ 5 मिनट मेरे बच्चे के खोने पर उसकी माँ की ये हालत हो गई, तो मेरी माँ 10 साल से वृद्धाश्रम में कैसे रहती होगी।

सजनो इस रात्रि यह स्थान तो घर मत जानो, यहाँ पर भगवान शंकर का मूर्ति तो स्थापित है, इसलिए यह स्थान तो शिव मंदिर है। इस मंदिर में इस तीर्थस्थान में बैठकर मन मने काट कर भगवान को तुम स्मरण करो, उनका उच्च नाम जप करो। भगवान शंकर ने कहा कि हे भक्तजनों आवो बैठो जपो हरि नाम इस शिव मंदिर में। We join together as we sing.

प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ करवदर्शधृशामखिलं भवन्तलं यत् प्रसादात् कव्यन्ति सूक्ष्मा सा जयतु

दिगंबराय नेत्याय शुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः

इस भीड़ भरी दुनिया में हर चेहरा अपना लगता है, लेकिन जब दर्द हद से गुजर जाता है तो कोई साथ नहीं देता। अपने भी बदल जाते हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं, पर एक नाम ऐसा है जो हर हाल में साथ रहता है, वो नाम है

बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जय सीताराम डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू पूजा विधि। आई एम योर होस्ट दिस मॉर्निंग पंडित कपिल देव महाराज। सो वी कंटिन्यू व्हेन वी ऑफर ऑन टू द लिंगम वी डू इन अभिषेक वी चांट द फॉलोइंग मंत्रस। ओ त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधानां मृत्योर्मोक्षयामामृता। शिव भगवान की जय। वी कैन ऑल्सो चांट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।

थक गया हूं मैं भोले, इस दुनिया के शोर से हर कोई अपना लगता था, पर वक्त ने सब पराए कर दिए। एक अनसुलझी पहेली सा बन गया हूं महादेव, जिसे कोई समझ नहीं पाया।

मैं गलत नहीं था, बस अकेला था और अकेलापन सबसे बड़ा दर्द होता है। काश किसी ने ये समझा होता।

से नहीं, खुद से थक गया हूं बोले, अब बस तेरे साथ चलना है, जहां दर्द नहीं सिर्फ शांति हो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: क्या बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बता दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

सी भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।